0: पर्ने उद्योग को हक में 15 दिने सार्वजनिक सूचना सूचना टाँच मुचुल्का संबंधित स्थानीय निकाय को सरजमीन सहित को सिफारिश स्कीम स्वीकृत कार्यसूची तथा आईईआईए प्रतिवेदन
1: विस्तृत जानकारी का लागि एकीकृत सेवा कार्यालय कास्की पोखरा 7 मासवार